ये क्या करने लगे हो? तुम तो हद से गुजरने लगे हो, ये मुझे कहाँ ले आए हो? कहाँ का वादा करके तुम कहाँ ले आए हर जाई? तुम्हें तो दिल लगी सूझी,